अपनी खलकत दी इन्नी वडियाई नहीं कीती जिन्नी वडियाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीती। मैं रहां इत्थों तक कहता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किसी ने नहीं किया मेरा रूप अपनी खलकत। उदासी संप्रदाय तुसी सुनिया होगा, उदासी संप्रदाय इहदे विच भाई प्रेम दास होए ने जिन्हां ने आनंदपुर साहब अमृत छक के ते भाई प्रेम सिंह सजे ने ते चार पांच दिन इहनां नूं हो गए सी आनंदपुर साहब रहिंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एक दिन आख्या कि भाई प्रेम सिंह अपने घर जाओ किरत करो, कितने दिन हो गए ने घर जाओ किरत करो। जिस बोली च बचन लिखे ने भाई प्रेम सिंह जी दे अगों बचन सी कहिंदे सतगुरु यहां तो आपके रोज दर्शन पावता हूं, अपने शहर जाकर घर जाकर आपके दर्शन की इच्छा हुई थी, कैसे दर्शन करूंगा। इस बोली की लिखा खड़े खड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं भाई प्रेम सिंह घर जाओ किरत करो, जदों साडे दर्शना की इच्छा होवे किसे पांच अमृतधारी गुरसिखां दे दर्शन कर लेने, उन्हां विच्चों तैनू मेरे दर्शन होंगे। आखो सतनाम। हुण किसे बंदे नू कोई गल करो ना ते वो अगों सिर ला देवे जां हथ जोड़ देवे जां सत वचन कवे ते इंज लगदा तसली हो गई, उहने ना सिर लाया ना हथ जोड़े, खड़ा उसे च हथ जोड़ के। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते बोलता नहीं, बड़ा निमाणे होके कहता सतगुरु आप जी के बचन सत ने, कि पांच अमृतधारी गुरसिखां दे दर्शन विचों तुहाडे दर्शन होणगे, पर सतगुरु जे पांच मिले ही ना ये पांच लभणियां। ये पढ़ो इतिहास। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते भाई प्रेम सिंह किसे एक अमृतधारी गुरसिख दे दर्शन कर ली भावना नाल तेनों उदे विच्चों मेरे दर्शन होंगे। कहते उत्थे उदा हाथ उत्थे सिर उत्थे शरीर हिलजुल नहीं। सतगुरु दूजी हरी कहते बोलदा नहीं, कहिंदा सतगुरु आप जी दे वचन सत ने सत ने, पर एहो जा समा बन जे सतगुरु एक भी ना मिले, एक भी ना मिले। महाराज जी हुण अगली गल किड्डी वड्डी कहती। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे भाई प्रेम सिंह अगर एक भी ना मिले तू खुद केसा सने स्नान करके नितनेम करके सिमरन करके त्यार वर त्यार होके दर्पण में, दर्पण शीशे नु क्या, त्यार वर त्यार होके दर्पण पे अपना मुख देख लेना, तेनु अपने मुख चो ही मेरे दर्शन आउणगे। आखो सतनाम। इन्नी वड्याई किसे नहीं दिती। खालसा मेरो रूप है खास। हाल से मैं हूं करो निवास। असी कोई पैरा लिखण लगीए ते फिर थले फुल स्टॉप पा देने या दो लीकां पा देने भी यह पैरा खत्म हो गया। तुसी कलगीधर पातशाह जी नूं पुछो महाराज जी जिन्नी क वड्याई तुसी करनी सी बस फुल स्टॉप लाता लकीरां पातियां एंड। कहिंदे नहीं मैं अगे चलांगा। अगे जाके की कहते खालसा मेरो मुख है अंगा,
ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੋ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅੰਗਾ ਖਾਲਸੇ ਕਿਉਂ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਨ ਲਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਛਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅੰਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਖਾਲਸੇ ਕਿਉਂ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ।

निर्धन को पल्ले, निर्धन को पल्ले, पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना गुरु का सिख दसवंध कढ़े, सारे चाती पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता, ए अगे प्रकरण आणगे। जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उत्थे भोगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सगुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारे अनक बहु पाती छोटे कथू नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी।

परम सत्कार को शासन। सतगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दे सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाईए। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै, इस नू खा, आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डाक्टर कोल भी गया, डाक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए, दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं, ते दुख किवें दूर होवे? दवाई खाधे बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ये तो चाहिदा है ना कि जिद कोल कुछ लैना है उहदे नाल मन ते जोड़िए, उहदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचते ने, तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक बारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे, पर गुरु साहब जी कहंदे ने नहीं, मिले जे तीर्थ नातिया डड्डा जलवासी। जे तीर्थ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा है, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीर्थां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाणा किस तरह है इह भी नहीं पता। साहब जी उपदेश करते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा,
ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਾਵੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ ਹੈ। ਨਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਨਾਵੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਵੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਬਗੈਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है, पर किस तरह? आठ पहर आराधी, अठे पहर उहदी आराधना करिए, उहदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नाश होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दित्ती है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक वारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहर दे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगता आईया, एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिते गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नूं देखिया।

ते हंस के कहन लगे, लाल चंद बड़ा चतुर निकले, बड़ा सियाना निकले, वादा ते करके गया सी उन्नू लियावांगा जिन्हें गीता कदी पढ़ी नहीं, पर उन्नू लेके आया है जिड़ा बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इन्नी गल कह के फिर सतगुरु देख दे छजू चीवर वाल हन, ते कहंदे लाल चंद नूं ने चंगा लाल चंद जिन्नू भी लैके आ गया, ये गुरु नानक का घर ऐसा है, इत्थे जिहड़ा जैसी भावना लैके आंदा है उसनूं ओहो जिहा फल मिलदा है। तेरी इच्छा है इहदे कोल गीता सुननी, ते गुरु नानक तेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु साहिबां दे हाथ विच हमेशा एक छड़ी हुंदी सी खूंडी, ओ खूंडी गुरु साहिबां ने छज्जू चीवर दे सिर ते रखी मेर भरी निगाह दे नाल। छज्जू चीवर वल तकिया ते मुस्कुरा के कहंदे ने, छज्जू ओ भाई सिखा, पंडित जी की इच्छा है कि तू गीता सुनावे। भाई सिखा इन्हां दी इच्छा पूरी कर, पर सुन कल्ली गीता पढ़नी नहीं, नाल श्लोकां दे अर्थ भी करके दसने हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद गुरु दी मेहर दी नजर होई, सिर ते गुरु साहिबां ने अपनी छड़ी रखी, ते ओह छज्जू चीवर जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन, वाल खिलरे, शरीर दी सुध नहीं, रंग ही बदल गया, गुरु दी शोभ मिली, चेहरा ही होर हो गया। जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन, बैठा दरबार विच इधर उधर झाकदा सी जिवें बावरे शदाई बैठे हुंदे ने, हुण रंग ही होर हो गया। हाथ जोड़ के परे दरबार विच खड़ा होया और फिर चरना ते मत्था टेकया और फिर मत्था टेक के फिर खड़ा होया, हाथ जोड़े ते कहन लगा, दाता तेरा शुक्र है, तू मैनू नवा जीवन दिता है, शरीर दी सुध दिती, दुनिया दी सुध दिती, दुनिया दी सोझी दिती, ते पातशाह हुण हुकम कर। साहब जी कहन लगे, छज्जू गीता पढ़ के सुना, नाले अर्थ करके सुना। ते छज्जू चीवर कहंदा, दाता हुण ते तेरी मेहर हो गई है, हुण ते तू हुकम कर, ए गीता ते की सारी कायनात पढ़ के सुना दें। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सारी दुनिया दा हाल दस दें, इतनी तेरी मेहर हो गई। ते छज्जू चीवर पंडित दे सामने बैठा गीता पढ़दा है, नाल श्लोक दे अर्थ कर करके दसदा है। ओ ज्यो ज्यो गीता पढ़दा है ते पंडित लाल चंद कोल बैठा रोई जांदा, ज्यो ज्यो सुनदा है अखां विच अथरू डिगदे हन। ते जद गीता दी ए सारी कथा दा भोग पया, ते लाल चंद हुण उठया, भज के चरण पकड़े और चरणा ते सिर रख के ज्यों रोण लगा, कहन लगा, महाराज मैनू खिमा कर, मैं भुल गया, तेरा प्रतावा लैण आया, असी औगण आ रहे तेरा प्रतावा लैने। ते सतगुरु कहंदे ने, लाल चंद रो ना,
ਉੱਠ ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਸਦਕਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 7:10 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ 7 ਤੋਂ 8 ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ।

0: बनाई राष्ट्रपति रत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के पूज्यो कहां गवार
1: अजनु समझ लच बिगड़िया ना हनी अजनु समझ

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

कि परमा विच मैं पुलिया फिरदा हां, माया मोह परम पे पूले सुत दारा सो प्रीत लगाई। सुत कहंदे ने पुत्र, दारा कहंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घरवालियां नाल लाया हुआ।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तैनूं पलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर किरपा बख्श, तुसी करो किरपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर किरपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां अगे।

हे माधो माया दे मालिक, माया दे साईं, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। साधु संगत हुण ध्यान देण, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे हां, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करन वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले। किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सब नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल

हम अवगुण तुम उपकारी। मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है।

0: काहे नखंडस अवगुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए,
0: गोबिंद हम ऐसे अपराधी, गोबिंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि हे मेरे मालक असी किहो जिहे अपराधी हां, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहिंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। सत्संग ध्यान करना,

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारा कर दी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाया कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सीह के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर करतार सिंह।